मुझ मयाम बाब कर गए हम दूसरी से मर गत मयाम बाब कर गए मुझ कंटोम फाल अगल विजय I'm not going to be able to do it.